0: कमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या। ऐसे में सुनेर कस्त लाग्यो, झम्म लाग्यो।
0: कमेडी क्याप्सुल,
2: अडियो अडियो, एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा,
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सूल।
1: इन्डियन केटीले डाक्टर सँग भन्नुभयो मेरा बेटा मोटरसाइकल से गिर गया। त्यसपछि डाक्टरले भन्नुभयो आई डोन्ट नो हिन्दी, प्लिज टक इन इङ्ग्लिस। त्यसपछि लेडीले भन्नुभयो सर आई नो स्पिक इङ्ग्लिस। डाक्टरले भन्नुभयो ट्राई प्लिज। यसपछि लेडीले भन्नुभयो माई लोन्डा गिरोन्डा फ्रम हिरोन्डा।
0: कमेडी क्याप्सूल।
2: अडियो अडियो
3: एक काम दुई काम मैदान,
4: यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: के तिमी पहाड चढ्न सक्छौ? हो सक्दिन कि क्या हो, सक्दिन सक्दिन। के तिमी सञ्जीवनी बुटी ल्याउन सक्छौ? त्यो पनि सक्दिन। त्यसपछि के लेखा रहेछ? के तिमी छाती चिर्न सक्छौ? त्यो पनि सक्दिन। त्यसपछि के लेखा रहेछ? ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास। अन्तिममा लेखा रहेछ, त्यसैले साथी अनुहार बाँदर जस्तो हुँदैमा कोही पनि हनुमान हुँदैन।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो एडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी कैप्सूल,
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कॉमेडी कैप्सूल,
2: ऑडियो ऑडियो,
3: एक कान दो कान मैदान,
4: यस मैं छ मजा
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: मात्र पुग्छ, न केही चताना भई न केही कोडारा। एकान्दुकन मैदान भयो चारैतिर, एकान्दुकन मैदान भयो चारैतिर।
1: देशकै स्वादिलो रेडियो, रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मज्जा।
2: पाक मुख खानु जस्तो ए हजुर एकपल्ट रे

0: तमेरी क्याप्सुल
1: संस्कृत शिक्षकले सोध्नु भयो तमसोमा ज्योतिर्गमय यसको अर्थ के हो तब विद्यार्थीले भन्नु भयो तुम सो जाओ मा मैं ज्योति का घर जा रहा हूँ
0: तमेरी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: यदि स्वीट ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास सुगर आँखा में हालेर सुत्ने, गजब का आइडिया हो क्या हो? यदि स्वीट ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास सुगर आँखा में हालेर सुत्ने, यदि मसाला ड्रीम देखने हो भने एक ग्लास मसाला आँखा में हालेर सुत्ने।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: अडियो अडियो
0: एक कान दुई कान मैदान,
2: यसमै छ मजा।
0: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटी टर टर नपारी बट्टा फाल्नै मन लाग्दैन।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: अडियो अडियो एक काम दो काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो। एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: मेरो नजरमा त तपाईँ एकदमै खराब भइसक्नु भयो ज्वाइँ।
2: यति राम्रो ज्वाइँलाई खराब देख्ने आँखा दान गर्दै भयो त।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: तिमी हाँसिरौ, मेरो मैयाको उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ। कति उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ, गुनगुनाइरौ, मेरो के जान्छ यार, तिमीलाई सबैले पागल भन्छ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी कैप्सूल।
1: कृपया ध्यान देउ, कृपया ध्यान देउ, त्यसपछि त के हो ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास ड्यास, ए अन्त्यमा लेख्या रहेछ ध्यान दिएकोमा धन्यवाद।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: यदि स्वीट ड्रीम देख्ने हो भने एक ग्लास सुगर आँखामा हालेर सुत्ने, गजबको आइडिया हो क्या हो? यदि स्वीट ड्रीम देख्ने हो भने एक ग्लास सुगर आँखामा हालेर सुत्ने, यदि मसला ड्रीम देख्ने हो भने एक ग्लास मसला आँखामा हालेर सुत्ने।
0: कॉमेडी क्याप्सूल।
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान, इसमें छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटि टर टर नपारी बट्टा फाल्ने मन लाग्दैन।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
3: एक काम दुई काम मैदान,
4: यसमै छ मजा।
5: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल। मेरो नजरमा त तपाईँ एकदमै खराब भइसक्नु भयो ज्वाइँ।
1: यति राम्रो ज्वाइँलाई खराब देख्ने आँखा दान गर्दे भयो त।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: दियो दियो। एक काम दुई काम मैदान। यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए फर्सी, त्यहाँ हेर त, ऊ त्यो केटी मलाई हेरेर मुस्कुराइरहेछ।
2: त्यो त के हो र, जब मैले पहिलो पटक तिम्रो अनुहार हेरेकी थिएँ, तिन दिनसम्म मैले हाँसो रोक्न सकेकै थिइनँ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: एडियो एडियो। ए कान धोई कान मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: सर संता, इससे पहले कि हम अपनी मोबाइल कंपनी में आपको नौकरी दें, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है?
2: कार्टून नेटवर्क।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: तुझे पता है बंता, नौकरों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
2: भाई क्यों, क्या हुआ?
1: मैंने और मेरी बीवी ने प्यार करने का एक कोड रखा था। वो कोड था चलो चीनी खाएं, और ये कोड मेरे नौकर ने सुन लिया। एक दिन मेरा नौकर मेरी बेटी के साथ प्यार कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
2: अच्छा, फिर तूने क्या कहा?
1: मैंने अपने नौकर को कहा, अबे साले ये क्या कर रहा है? मेरा नौकर कहता, चीनी खा रहा हूँ मालिक। मैंने उसे कहा, चीनी ही खानी थी तो खुली बोरी से खा लेता, नई बोरी खोलने की क्या जरूरत थी।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: संता जी, आपका घर इतना दूर है कि मुझे 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा आपका ये पार्सल पहुंचाने के लिए।
2: ओ पोस्टमैन जी, आप इतनी दूर क्यों आए? इससे अच्छा था कि आप इसे पोस्ट ही कर देते।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

सुनौता रेडियो अडियो देशकै स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान यसमै छ मजा ए राता मकै रेडियो अडियो खोल्न पर्दैन।

0: तमेरी कैप्सूल।
1: पप्पू तुम हिस्ट्री में फेल क्यों हो गए?
2: पापा सभी क्वेश्चन उस टाइम के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
0: तमेरी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो कान धोई कान मैदान। यस मैं छ मजा
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ।
2: वर मांगो वत्स।
3: प्रभु जी, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे वधु चाहिए।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
4: ऑडियो ऑडियो एक काम दो काम मैदान। यस मैं छ मजा
5: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: उस लड़की का क्या हुआ जिसे तू प्रपोज मारने गया था?
2: ओए बंता, मैंने उसे प्रपोज मार दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो उसने क्या कहा?
2: वो बोली, मैं तेरे से एक साल बड़ी हूँ।
1: अच्छा, तो तूने क्या कहा?
2: मैंने कहा, कोई बात नहीं सोनिए, मैं तुझसे अगले साल शादी कर लूंगा।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान। यस मैच मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: डॉक्टर साहब, मैं सुसु 6 बजे करता हूँ और पॉटी 7 बजे करता हूँ।
2: अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: पर डॉक्टर साहब, मेरी आँख 8 बजे खुलती है।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
3: अडियो अडियो। एक कान दो कान मैदान। यस मैं छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: भविष्य उज्जवल छ।
1: बल्यो हरियो बल्यो सुनिराख्नुस् है।
2: सुन नीलो आकाश चाहिन्छ नीलो नै एक्सट्रीम एनर्जी एक्सट्रीम
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
4: अरे वाह देश के स्वादिलो रेडियो रेडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान इसमें छ मज्जा।